0: ओए पुली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
1: भोले ने कसूते फसाते
0: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए टू फ्री टेफ नाल अपने शौक नू अपनी नौकरी विच बदलो हॉस्पिटैलिटी तो लेके साइबर सुरक्षा तक बिना किसी ट्यूशन फीस दे 80 तो वध भारी मांग वाली योग्यतावां अते छोटे कोर्सां विचों चुनो उस नौकरी लई हुनर हासिल करो जो तुसी करनी चाहुंदे हो फ्री टेफ सुपने नू हकीकत बनाउंदा है टेफ विक्टोरिया नाल अपने सुपने नू हकीकत बनाओ फ्री टेफ लिख के खोजो
2: ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबर्न

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया,
3: अथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमीग्रेशन नु, जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
5: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओह वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
6: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22-carat गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे ही कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
3: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
4: हां जी रेडियो।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: एक अजेही दुनिया जिथे जिराफ हुन सब तो उच्चे जानवर नहीं है। जूस विक्टोरिया मान नाल चिड़िया घर विच डायनासोर्स नु पेश करदा है अपने सारे मन पसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़िया घरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़िया घर, वेरीबी ओपन रेंज चिड़िया घर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नु जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077973।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तो आड़े नाल।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाओ देने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान 0433-280-252 ते 0403-283-252 पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू, जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tirefors.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तो पहला ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तो पहला 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन, जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त वी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford!

रेडियो हाँ जी 1674 एम ते मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लेके हुए हाजिर दो रिपोर्ट आज दे दिन जिन्हां दा जिक्र करना है जिन्हां दे उत्ते गल करनी है एक ता ईरान ते अमरीका दे विच डील हुई है समझौता होया सुनन दे विच हैरानी हो रही है कि जदों लड़ाई हुई सी ता तीन जने सी जदों समझौता होया ता दो जने रह गए ने तीजा किथे है उहदा जिक्र अज दी रिपोर्ट च करांगे ते इस दे विच बाकी किथे ने यानी कि अमरीका का की बनू आस्ट्रेलिया का की बनू भारत का की बनू अमरीका का तो चलो खैर जो बनू सो बनू भारत आस्ट्रेलिया के हवाले के नाल भी गल करांगे एक यह रिपोर्ट तो दूजी रिपोर्ट जिहड़ी अकाल तख्त साहब की फसील तो फरमान जारी होया कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे जिहड़ा वह ना मनिया जाए तो गुरु दुखी करार दिता गया हैगा उस तो बाद मुख्यमंत्री दी की टिप्पणी आई है प्लस एदे नाल अकाल तख्त साहब दा जिहड़ा ये फरमान हुंदा है किस तरीके दे नाल लागू हुंदा है सिखां दे तख्तां दा संकल्प की है और की इस जिदा अदालतां दे विच हेठली अदालत दे हुकम नूं उपरली दे विच जां फिर क्रॉस अदालतां दे विच इह लैके जाया जा सकदा है कि अकाल तख्त ते बाकी तख्तां दे विचकार फर्क हैगा कि अकाल तख्त दे हुकम दे बारे जे कोई दूसरा तख्त कह दे उस नूं टालिया या बदलिया जा सकदा है इहदे उत्ते भी गल करांगे दो ऐसे मुद्दे जो वक्खो वक्खरे ने हो सकदा है कि तुहानूं लगे कि सीधे तौर दे उत्ते साडा कोई संबंध है नहीं पर फिर भी जिवें अगे भी इनसाइट रिपोर्ट दे विच किहा कि इह खबरां दे अंदर दी तह तक जाने की आप कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम दे विच सो तुहाडा लेना देना सीधे तौर दे उत्ते होवे ना होवे पर फिर भी यह जानकारियां हासिल कर लिया करो क्योंकि ये नाल फायदा ही होगा वो कहने हैं कि सियाणियां दा कहा ते औले दा खादा मगरों पता लगता है इनसाइट रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही औले की तरह असर करेगी आशात करते हैं शुरुआत अज्ज दे इस प्रोग्राम की इनसाइट रिपोर्ट रेडियो हाँ जी 1674 एम ते

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ते। वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
4: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
5: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਖੜਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚਿਜ਼ਮ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿਜ਼ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਚਿਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ RTO 0260।
6: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
7: ਹਾਂਜੀ

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
4: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपां बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
5: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
6: लाओ जी तुहाडी नजर है भोला।
7: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
8: भोले ने कसूते फसाते।
7: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2
9: भोला भाई।
10: सोना चाहिदा,
11: भरोसा चाहिदा,
10: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
12: टेंशन मेरी टेंशन
13: की होया
12: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
13: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमीग्रेशन नु जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
12: या 90-77-93
13: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
12: याद रखो 9077-9733
13: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
12: हर कदम तुहाडे नाल।
7: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उडीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
14: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
1: ओबिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04-280-252 ते 04-33-280-252 ते।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जदा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 04-48-064-94 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ

रेडियो हाँ जी 1674 एम ते मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लेके हुए हैं। हाजिर दो रिपोर्ट आज दे दिन जिन्हों का जिक्र करना है, जिन्हों के उत्ते गल करनी है। एक तो ईरान ते अमरीका दे विच डील हुई है, समझौता होया। सुनन दे विच हैरानी हो रही है कि जदों लड़ाई हुई सी तां तीन जाने सी, जदों समझौता होया तां दो जाने रह गए ने, तीजा कित्थे है? उहदा जिक्र अज दी रिपोर्ट च करांगे। ते इस दे विच बाकी कित्थे ने, यानी कि अमरीका का की बनू, आस्ट्रेलिया का की बनू, भारत का की बनू। अमरीका का तो चलो खैर जो बनू सो बनू, भारत ते आस्ट्रेलिया के हवाले के नाल भी गल करांगे। एक यह रिपोर्ट ते दूजी रिपोर्ट जिहड़ी अकाल तख्त साहब की फसील तो फरमान जारी होया कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे जिहड़ा वह ना मनिया जाए तो गुरु दोखी करार दिता गया है। वो तो बाद मुख्यमंत्री दी की टिप्पणी आई है, प्लस ये नाल अकाल तख्त साहब का जिहड़ा यह फरमान हुंदा है किस तरीके दे नाल लागू हुंदा है, सिखां दे तख्तां दा संकल्प की है, और की इस जिदा जिदा अदालतां दे विच हेठली अदालत दे हुकम नूं उपरली दे विच जां फिर क्रॉस अदालतां दे विच ये लैके जाया जा सकदा है कि अकाल तख्त ते बाकी तख्तां दे विचकार फर्क हैगा, कि अकाल तख्त दे हुकम दे बारे जे कोई दूसरा तख्त कह दे उस नूं टालिया या बदलिया जा सकदा है। इहदे उत्ते भी गल करांगे। दो ऐसे मुद्दे जो वक्खो वक्खरे ने, हो सकदा है कि तुहानूं लगे कि सीधे तौर दे उत्ते साडा कोई संबंध है नहीं, पर फिर भी जिवें अगे भी इनसाइट रिपोर्ट दे विच किहा है कि इह खबरां दे अंदर दी तह तक जाण दी आपां कोशिश करदे हां इस प्रोग्राम दे विच। सो तुहाडा लैणा देणा सीधे तौर दे उत्ते होवे ना होवे, पर फिर भी इह जानकारियां हासिल कर लिया करो क्योंकि ये नाल फायदा ही होगा। वो कहने कि सियाणियां दा कहा ते औले दा खादा मगरों पता लगता है, इनसाइट रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही औले की तरह असर करेगी। आओशाद करते हैं शुरुआत अज्ज दे इस प्रोग्राम की। इनसाइट रिपोर्ट रेडियो हाँ जी 1674 एम ते।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा?
0: मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस।
1: ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: हाँ जी हाँ जी।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802552 ते।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने,
3: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
4: सूरज देवता
3: की मतलब?
4: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
3: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

मेरे हानिया मेरे दोस्ता मैनू जानते वेख ली सारी उम्र ना खड़िया नाल मेरे मेरा सेवा तो सेक ली।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802552 ते।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 90779733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जदा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्या।

गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हासो कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, विन पाने के नाय करी। जेती सृष्ट उफाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवाख नाम विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रहाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे, ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस तरै। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। ते हा कोई न सुजे, जे तिस गुण कोई करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तर तवल आकाश। सुनै दीप लोप पाताल, सुनै पो न सके काल। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। सुनै ईसर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख सलाहन मंद। सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै शास्त सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। सुनै सत संतोख ज्ञान, सुनै अठ सठ का इस

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए।

जो तुद पावै साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तांदे पानी तोता पुत्र सखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए ओ तोए, परिये मत पापा कै संग, ओ तोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरा मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार, वेल ना पाया पंडती, जे होवे लेख पुराण, वक्त ना पाया का दिया, जे लिखन ले कुरान, हितवार ना जोगी जान, रुत महा ना कोई, जां करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई, केव कर आखा केव सलाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आख है, एक दू एक सियाणा, वड्डा साहेब

न पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंग

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए ओ जाने।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्रीमुख वाग पाद सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है

कालान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बदनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मक तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग्रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सरबल गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीस है, परंग परंग ईस है, समस्त अदीस है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेख है, जमीन जुमा है, अमी कुलुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जुमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के

गुणगन मुदाम अर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करनाले है अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातप है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भंग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तर निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब भूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में।

शराब समूह सिद्धान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पहुन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे अंत को नांगे बाय बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंस दहें राज हजारे ओत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिक है पौन हार जति जत तार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जा।

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतकारा हमरे दुख सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो मोए राख

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण।

सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव नंकार कार चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पुपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फूर राजा हर बैठा कहो सिमट पयो संकर्या कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे दिन के दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जाने तत्तै सार न जाने गुरु बाजो तत्तै सार न जाने तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

अकाल पुरख परमात्मा ने जो मनुखां दी जिंदगी विच लिख दिता, जिन्हां उत्ते उस मालिक ने रहमत कर दिती, गुरद्वारे लाए पावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया, इक ना जीवां दा गुरु चरणा दे नाल प्यार बना दिता, उन्हां नूं गुरमुख बना दिता। एक जीव मनमुख विकारी बिरती वाले तो असल दे विच तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहखा जन होई। पातशाह जी कह रहे ने, वाहिगुरु जी तुसी जो धुर तो जीवां दे कर्मां विच लेख लिख दिता है, उस नूं मेट कोई सकदा नहीं, जो तू करदा सोई।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। दर्शन जो आप करते हैं श्रवण के माध्यम से अपने दास के साथ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो सोवत है वो खोवत है। यानी जो सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है वो हेल्दी एंड वेल्दी दोनों रहता है। और अगर शुरुआत पुण्य दर्शन के साथ अध्यात्म भरी हो जाए तो सोने पे सुहागा। यहां सोना गोल्ड है मित्रों, बिस्तर वाला मत समझ लीजिए। हमें मॉर्निंग में अपने पूरे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी और विचारों को अपने चित्त में बसाना चाहिए। भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ पल ही सही, अध्यात्म, परमात्मा, ईश्वर, जिसे आप अपना भगवान मानते हैं, उनके साथ बिताना चाहिए। इसके लिए एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर या वातावरण बनाने के लिए आपके लिए सुंदर भजन लेकर आया हूं, उनका आनंद लीजिए। और आज मेरे पास कौन कौन से मोती हैं जो चुन चुन कर लाया हूं, ये जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ। मैं हूं आपका दास

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपका दास। आज के युग में एक नहीं हजारों समस्याएं हमें देखने या स्वयं झेलने को मिलती हैं। इनमें से एक है ओवरथिंकिंग। ये आज के समय की एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो धीरे धीरे हमारे मन, शरीर और रिश्तों को प्रभावित करती हैं। आजकल सो कॉल्ड रिलैक्सिंग सेंटर हैं, मेडिटेशन सेंटर हैं, जहां पर बस आंख बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। उसमें से अधिकतर लोग समस्या का समाधान लेकर नहीं बल्कि और ज्यादा ओवर थिंकिंग कर अपना मन विचलित कर आते हैं। जब हम हर छोटी बड़ी बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन नेगेटिविटी, डर और असुरक्षा से भर जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हम इसे नियंत्रित करें तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और यदि हम इसके नियंत्रण में खुद आ जाएं तो यह हमें चिंता और तनाव के जाल में फंसा देता है। आपका मन आपके कंट्रोल में ना हो तो ये राई का पहाड़ बनाने में देर नहीं करता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं अपने मित्र के साथ जा रहे हो, दूर एक मुंह पर मास्क लगाए एक अनजान व्यक्ति आपको घूर रहा हो। अब दोनों के मन में क्या चल रहा है ये सब अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब आप ये सोचकर उसे इग्नोर भी कर सकते हैं कि कोई होगा, हमें क्या, जब तक कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। किंतु अगर आप ओवरथिंकिंग का शिकार हैं तो कुछ ही पलों में आपकी नजर में वो व्यक्ति आपको एक अपराधी, एक चोर, एक लुटेरा भी लग सकता है, जो आपको ही लूटने वाला है और वहीं खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, जबकि ऐसा अधिकतर मामलों में नहीं होता। फिर भी हमारा मन हमें भयभीत कर देता है सिर्फ ओवरथिंकिंग से। तो कैसे बचा जाए इस बेकार की किंतु बड़ी बीमारी से, बताता हूं बहुत जल्द। मैं यूं गया यूं आया, आप सुनते रहिए पुण्य दर्शन।

0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। तो ओवरथिंकिंग से बचने के लिए शास्त्रों में बहुत सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। पहला कदम है अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ चुनना, यानी पॉजिटिव लोगों का, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों का अपने आसपास होना यह निश्चित कीजिए, क्योंकि संगति का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामा, अर्थात जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे विचार और इच्छाएं बनती हैं। जब हम अपने ध्यान को अभी पर केंद्रित करते हैं तो अनावश्यक चिंताएं अपने आप कम होने लगती हैं। गीता में कहा गया है, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को स्थिर रखकर वर्तमान में रहकर कर्म करना ही योग है। तीसरा उपाय ओवरथिंकिंग से बचने का, अपने विचारों को चुनौती

किंतु ओवरथिंकिंग के चलते आपने उसे एक अपराधी मान लिया। मित्रों, खुद से प्रश्न कीजिए जब आप कोई ओवरथिंकिंग की तरफ चलते हैं। पूछिए अपने आप से, क्या ये जो मैं सोच रहा हूं सही है या उस समय के लिए जरूरी है, और क्या मेरे लिए ये बेनिफिशियल होगा या उपयोगी है। चौथा उपाय है जानकारी का सीमित सेवन करना। आज के डिजिटल युग में हम जरूरत से ज्यादा सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जो हमारे मन को भ्रमित और अशांत कर देती हैं। आप डिजिटल युग के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अगर मान लो आपको एक मच्छर ने काटा और एक लाल धब्बा आपके शरीर के किसी अंग पर उभर आता है, जो एक मामूली प्रक्रिया है, किंतु अगर आप उस लाल धब्बे को इंटरनेट पर खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको ना जाने कितने उदाहरण, एग्जाम्पल और बीमारियों के बारे में फ्री में बता दिया जाएगा कि वो लाल धब्बा क्या हो सकता है, और वहीं से शुरू होगी हमारी ओवरथिंकिंग। अब एक छोटे से मच्छर से काटा हुआ वो लाल धब्बा कुछ ही क्षणों में या थोड़ा सा नारियल का तेल लगाने से दूर हो सकता है, हो भी जाता है, किंतु ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ओवरथिंकर बनाती है। हमें चिंता में डाल देती है कि अरे मेरे शरीर पर यह लाल धब्बा, कितनी खतरनाक बीमारी मुझे लग गई है, इससे बचिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, परिणामों से अलग रहना सीखिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक हमें यही सिखाता है, कर्मण्येऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है मित्रों ये, जब हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल तो भगवान के हाथ में है, तो हम क्यों सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, इसने ये बोल दिया तो उसका तात्पर्य ये है और मेरे जीवन पर क्या क्या असर होगा, जबकि उसका असर सिर्फ उतना होगा जितना आपने कर्म किया है। कर्म के अनुसार ही भगवान कर्म फल देते हैं मित्रों, इससे अतिरिक्त और इससे कम किसी को मिलने वाला नहीं है। तो हम इन पांच सरल तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो एकदम नहीं, इंस्टेंट नूडल्स नहीं है मित्रों ये, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम होती रहेगी और मन शांत, स्थिर और सकारात्मक बनने लगता है। यही संतुलित और सफल जीवन की सच्ची कुंजी है। इस पर कीजिए विचार और आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: हाँ जी दोस्तों, इससे मैं एक अपडेट आ रही है साढ़े को, धन्यवाद मुख संधु जी, कहने कि हम फ्रीवे जिहड़ा वालन दे नेड़े बंद है, सो जे तुहाडे कोल कोई जानकारी है तो जरूर दस दिओ, ते जेकर तुसीं इस राह ते जा रहे हो तो जरूर इस चीज़ का ख्याल रखो। एक होर अपडेट जी है, प्रिंसेस फ्रीवे बैरिक दे इलाके तो भी आ रही है जिथे स्पीड घटा के 40 दी की गई, सो राइट लेन जी सिटी बाउंड वाले पासे दी प्रिंसेस फ्रीवे दे उत्ते कलाइड रोड ते प्रिंसेस हाईवे दे दरम्यान इत्थे को गड्डी खराब हुई है, 3 लेना ओपन ने पर स्पीड घटा के 40 दी की गई है, सो रखियो अपना ध्यान। तो एक आपां ब्रेक लैके वापसी करते हाँ, तो अज दी लाफ्टर थैरेपी शुरू करते हैं।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू इदे बारे दसन लई।
3: होर सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड वी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच वी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
4: कि तुसी अपने घर दे उपकरणां नू बिजली नाल चलाउण बारे सोच रहे हो, ए तुहाडे सोचण नालों किते आसान है। ईजी इलैक्ट्रिक SEC तुहानू छोटा अते बचता दा हिसाब लगाउण, उपकरणां दी तुलना करन अते भरोसेयोग ट्रेडीज़ नू इक्को थां ते लब्भण च मदद करदा है। तुसी बिजली दे बिलां ते $2,000 तों वी वध दी सालाना बचत कर सकदे हो। कि तुसी शुरू करन लई तैयार हो, ईजी इलैक्ट्रिक SEC.com.au ते जाओ। बिजली बिलां ते बचत करना है बहुत आसान SEC दे नाल। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न वलों जारी।
5: फ्री टेफ नाल अपने शौक नूं अपनी नौकरी विच बदलो। हॉस्पिटैलिटी तो लैके साइबर सुरक्षा तक बिना किसी ट्यूशन फीस दे 80 तो वध भारी मंग वाली योग्यतावां अते छोटे कोर्सां विचों चुनो। उस नौकरी लई हुनर हासिल करो जो तुसी करनी चाहुंदे हो। फ्री टेफ सुपने नूं हकीकत बनाउंदा है। टेफ विक्टोरिया नाल अपने सुपने नूं हकीकत बनाओ। फ्री टेफ लिख के खोजो।
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Kitchen da style dull lagda, bathroom vanity simple jiya, hun tension khatam karo, aa gaya ZJ Stone Mason, tuhade ghar nu banaye ekdam classy, assi banaune aa designer stone bench tops for kitchen, stylish vanity ate modern laundry, oh vi porcelain ate marble nal, jithe elegance mildi hai durability nal, hun na sirf ghar par tuhadi personality vi shine karegi stone de style nal. Call karo 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
7: सोना चाहिदा,
8: भरोसा चाहिदा,
7: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: हाँ जी हाँ जी,
9: हाँ जी रेडियो।
10: इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई स्टार्ट पंजाबी विच बोलना, तां तुसी विक्टोरिया पुलिस विच नौकरी करन लई उस तों भी वध योग हो जिन्ना तुसी सोचदे हो। वधिया शुरुआती तनखा नाल शुरू करो अते नौकरी दौरान दूजी भाषा की वरतों करके पत्ते कमाओ। विक्टोरिया पुलिस, रिक्रूटिंग नाउ। ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, मेलबर्न।

0: ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24 ਮੰਥ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 0433-280-252 ਤੇ 0433-280-252।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
6: सूरज देवता
5: की मतलब?
6: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
5: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
7: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
8: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
9: पोले ने कसूते फसाते।
8: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2
10: सोना चाहिदा,
11: भरोसा चाहिदा,
10: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
12: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं है। ज़ूज़ विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोरस नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़ियाघरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोरस दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार हो। मेलबर्न चिड़ियाघर, वेरीबी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
13: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई इक भरोसेयोग नां, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे ही कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।
1: ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ?
13: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।
1: ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ। ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433465492।
11: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-8860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
14: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reya hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options be available. Aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo, vehicle experts Tim Forbes ya Cory Nal. Radio Hanji de hawale nal pao 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.
15: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकरण।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ते। यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
6: सूरज देवता
5: की मतलब?
6: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जदा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
5: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
7: लाओ जी तुहाडी नजर है भोला।
8: ओए भोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
9: भोले ने कसूते फसाते।
8: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घर विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2
10: सोना चाहिदा,
11: भरोसा चाहिदा,
10: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
12: एक अजेही दुनिया जिथे जिराफ हुन सब तो उच्चे जानवर नहीं है। जूज विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोर्स नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़ियाघरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़ियाघर, वेरी बी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बना।
13: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसेयोग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ।
11: आओ थोड़ा कोई हल करिए।
14: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
11: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
14: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।
15: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricsec.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकरण।
1: रेडियो हाँ जी 1674 में गाना तुसीं सुनिया सी वे सुनिया मैनूं तां नहीं लगदा कमल खान की आवाज़ दे विच ते फिल्म आ रही है दस्तार। सो उस फिल्म दे विचों ये गाना तुहाडे नाल सांझा कीता। सो काफ़ी सारिया फिल्म इस टाइम दे उत्ते तैयार बार तैयार ने ते जिहड़ी इस टाइम शुक्रवार दे दिन फिल्म रिलीज़ होनी है वह 40 दिन ते पिछले शुक्रवार जिहड़ी रिलीज़ हो चुकी है फिल्म वह सी ओए भोले ओए 2। सो लगातार पंजाबी फिल्म हो रही ने रिलीज़ तो 17 तरीक न दस्तार 17 जुलाई न रिलीज़ हो जानी है ते विच कैरी ऑन जट्टा वह भी रिलीज़ होना आ गई। सो धड़ाधड़ फिल्मा तो तुम करो इंजॉय जेकर तुम कोई वेखी आ तो वो तुम साढ़े नाल सांझ पा सकते हो दस सकते हो भी किदा ते की। सो ये साढ़े तुहाडे लई कुछ एक जानकारियां ते एक जानकारी होर कि करन औजला गीतां दी मशीन वह भी अगस्त दे विच परफॉर्म करन दे लई हुण आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर दे उत्ते आउण जा रहे ने। सो इस टाइम दे उत्ते जानकारियां तुसीं सारे सोशल मीडिया दे उत्ते वेख लई होणगीआं ते जेकर नहीं ते फिर तुसीं जरूर वेख लिओ। ते आपां एक गाणा सुणदे हां ते फिर आपां वापसी करदे हां अज दीआं गल्लां बातां दे नाल ते एक छोटी जी ब्रेक गाना इंजॉय करते हैं रविंदर करेवाल की आवाज़।